समझदार सोजी वाले एक होर रस भी है जिन्हों नाम का रस कहते हरी का रस कहते होर बड़े स्वाद तू वेखे हो मालक ने बड़ी प्यारी रचना बनाई साढ़े जेड़े ज्ञान इंद्रे ने ना पांच ज्ञान इंद्रे फाइव सेंसेस अखा वेख दिया जीभ चखदी कान सुनदे ने नक सुंघदा है शरीर दी त्वचा शरीर दी स्किन जो है छोह के पता लाउंदी आला दुआला की है लेकिन इहदे नाल इक होर भी गल है इन्हां पंजां ही ज्ञान इंद्रियां च मालक ने रस भी पा छड़े स्वाद भर छड़े अखां वेखदियां भी ने वेखण दा रस भी लैंदियां जे तां नजारा वधिया है ते अखां रस लैंदियां ते जे नहीं तां फिर मूंह दूजे पासे भी हो जांदा जे सुनी जाण वाली आवाज सुरीली है रस विच है सुर विच है ते बंदा ध्यान नाल सुणदा है बल्कि हमातन गोश सारा शरीर कानी बन जाता है पूरा ध्यान पर जे वो आवाज बेसुरी होवे ते कन्ना चुंगलां भी दे लेता अण पौंदा शोर होवे ते नहीं भी बर्दाश्त होता इसे तरह सुंघण की शक्ति कदे बदबू भी लैंदी ते दुखी भी होंदी खुशबू नाले सुखी भी होंदी जीभ ते कुछ कौड़ा आ जावे ते थू थू भी बंदा करदा है कुछ स्वादला आ जावे ते अखां भी बोलदियां ने रस आए इन्हां पंजां ज्ञान इंद्रियां विच ही रस मालक ने भरे इह नखेड़ लैंदे ने रस देण वाली कीड़ी कीड़ी वस्तु ते फिर उस रस पिछे स्वाद देण वाली शय पिछे कई बार बंदा कमला भी हो जाता इथों तक कमला होया बंदा कई बार इन्हां रसां पिछे सुनन दे रस पिछे सुंघण दे रस पिछे वेखण दे रस पिछे छोण दे रस पिछे चखण दे रस पिछे इन्हां स्वादां च कई बार बंदा इन्ना कमला हो गया जानवरां तों भी थले जावे पावन बाणी च बचना है मृग मीन भृंग पतंग कुंचर मृग नूं हिरण नूं कन्नां दा रस है मच्छी नूं जीभा दा रस है पवरे नूं सुंघण दा रस पिया है फुल दे विच बैठा बैठा विचे ही शहीद हो जांदा है फुल मीटिया जांदा विचे खत्म हो जांदा पतंगा अखां दे रोग दा मारिया है इहनूं वेखण दा रस है ज्योति उत्ते सड़ मरदा है पर महाराज कहिंदे ने देखो कैसी गल है मिर्ग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश इन्हां नूं एक एक स्वाद पिया ते पंच दोख असाध जामे बंदे नूं तां पंजे पंजे कट्ठे भी लगे होए तां भी तां की केत कास इहदा किवें बचाओ असल गल इह है कि बंदे नूं अंदरला रस नहीं आया एक आत्म रस भी है साहिब कलगीधर पातशाह ने वचन कीता है साहिब कहिंदे ने

जमरौत दी जंग विच सिखा ने पठाना नू ऐसी मार मारी कि पठान कन्ना नू हथ ला तौबा तौबा कर उठे। काबल दियां गलियां बाजारां विच नलवे दियां गल्लां होण लगियां। नलवे तो डरदे पठान सूरज डुबदे सार घरां नू जंदरे ला अंदरी लुक जांदे। चार चुफेरे मरियां वर्गी चुप छा जांदी। अपने रोंदे न्यारियां नू चुप कराउण लई पठानियां इउं डराउंदियां।

0: सिख राज दिया हद्दा, दिनों दिन काबल वालू वद दिया देख, पठार सोची डूब गए।
1: अमीर काबल दोस्त मोहम्मद खां घबरा गया।
0: सरदार हरि सिंह नलुए दी चढ़त, पठाड़ा नू अपनी मौत दिसण लगी।
1: कई हजार मुल्किया कट्ठा कर शमी खान ने अपने दादे परदादे दी बहादरी दे वास्ते पौंदिया इंज आखिया।

0: 28 अप्रैल 1837 दा सूरज चढ़दिया ही 1000 सिंघा ने पठाना नू जा ललकारिया। सत श्री अकाल दे जयकारिया नाल आसमान गूंज उठिया, तलवारा पिड़िया,
1: धरती लहू लुहान हो गई,
0: लोथा ते लोथा चढ़ गईया। गुरु दे सिंघा ने ऐसे हद दिखाए कि गाजिया दे दंद जुड़ गए। दूजे दिन तोपां दे गोले दागे, रात पैंदिया ही जमरौद किले दी सज्जी कंध विच पाड़ पै गया।
1: हुण महासिंह अग्गे तीन काम सन, किले दी राखी करना, कंध दा पाड़ पूरना ते पिशोर बीमार पए सरदार हरी सिंह नलुए नू सुनेहा पहुंचाना।
0: सिंघा दे रोकदिया रोकदिया बीबी हरशरण कौर जत्थेदार तो चिट्ठी लै पेश बदल, किले विचो निकल तुरी, रातो रात पेंडा मुका, पिशौर च सरदार हरी सिंह नलुए नू जा चिट्ठी पुचाई। पढ़ के सरदार दिया अखा विच खून उतर आया, डौले फरके तलवार दे मुठे ते हथ गया। ऐ सोच के कि मेरी जिंदगी ही सिख राज दी जिंदगी है, ओ उठ बैठा। खालसे दी तलवार आज हिंदुस्तान दा इतिहास बदल सकती है, मैं जान नालों सिखी शान नू प्यारी समझदा हां। ऐ सोच दिया ही चट सिंघा नू इकट्ठे कर सरदार हरी सिंह नलुए ने इंज ललकारिया।

0: अप्रैल 1837 का सूरज चढ़दिया ही सरदार हरि सिंह नलुए ने सिख फौजा समेत बोले सो निहाल दा जयकारा गजा शम्मी खां दी फौज दा जा टाकरा कीता। तलवारा बरछिया विच्चों मौत दे चंग्यारे निकले, लोथा नू लिताड़ दे सिंगा दे कोड़े अगे वदन लगे, मनुखी सिर मतीरिया वांग पैरा विच रुलन लगे।
1: धरती लाल सूही हो गई, सरदार हरि सिंह नलुआ ते शम्मी खान मैदाने जंग विच एक दूजे नू एउं टकरे।

0: सरदार हरी सिंह ने फट नू कुटके बन लिया, कोड़े नू जमरौद किले वालू मोड़ दिता। किले विच पहुंचदिया ही जत्थेदार महा सिंह ने नलुए सरदार नू कोड़े तो ला पलंग उत्ते लिटा दिता। तकलीफ वध दी गई,
1: अद्धी रातों शरीर निढाल हो गया, जान साथ छड़न लगी, पर सरदार दे मुख ते लाली उसे तरह डलक रही सी, अजे भी सज्जा हाथ तलवार दी मुठ उते ही सी।
0: मैदानों परत के आए सिंगा तो लड़ाई दा हाल पुछया, जित दी खबर सुन गज के जयकारा बुलाया।
1: ते फेर सारे सिंगा वाल तक सरदार हरी सिंह नलुए ने हौसला दिंदे आख्या,
2: खालसा जी, मैनू अकाल पुरख दा सद्दा आ गया है। मैं पंथ वास्ते जमया सी, ते पंथ वास्ते शहीद हो रिया, मेरे पिछों घबराउना नहीं, तुसी खालसा राज दे राखे हो, खालसा जी जित्ता जारी रखनिया, पठान मुड़ के हिंदुस्तान वल मुंह ना कर सकन।
1: एह कहंदिया ही सरदार हरी सिंह नलुए ने अंतम सुनेहा इंज दित्ता।

परमेश्वर जिस दे चरना कमलां विच दास ने अर्ज करनी है, अरदास करनी। अरदास दा मकसद एहो ही है कि आउन वाला जो समा है मनुख उसको जानू नहीं कि आउन वाले समय दे विच की हो सकता है, सुख मिल सकता है या दुख मिल सकता है, मगर जो परमेश्वर है, जो साडा साईं है, साडा खसम है, उसनू ज्ञान है, वो जानता है कि आने वाला समा कैसा है। ते मनुख उस शक्तिमान परमात्मा दे चरना कमलां विच ये बेनती करता है कि है मेरे साहिब, मेरा आने वाला जो समा है उस दे विच मैनू सुख प्राप्त हो, मैं इसे करके तेरे चरना कमलां विच अरदास करदा। ते साहिब फरमाउंदे हन कि ऐ गुरसिख तू उस दी रहमत दा पात्र बन, क्यों जो ओ तेरे ते मेहर कर देवे ते तेरे सारे कारज रास हो जाने। मेहर करे जिस मेहरवान ता कारज आवे रास। साहिबां दा फरमान।

ये जो शब्द आप सर्वन कर रहे हो गुरु अर्जन देव पातशाह जी दा शुकराने दा शब्द है सुलही ते नारायण राख समय दा बादशाह जहांगीर जिसनू ए गल चंगी नहीं सी लगदी के गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जावे गुरु नानक दे दर ते जिथे गुरु के सिख आके जुड़दे सन हिंदू भी और मुसलमान भी रूहानियत प्राप्त करन लई हजूर दे चरणा विच आ जुड़दे सन इस दे मन विच बड़ा दुख सी के गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जा रही है अपने सीपा सलार नू हुकम दिता भाई तू कश्मीर नू जा रहे हैं जंग करन लई ते रस्ते विच गोंदवाल नाम करके पिंड है जिथे गुरु अर्जन देव रहिंदा है उसनू भी शोध दा जाई उचारण करो श्री वाहिगुरु ते जदों ए पता गुरु अर्जन देव पातशाह जी नू लग्या ता सिखा ने बेनती कीती जो इस शब्द विच अंकत है प्रथमे मता जे पत्री चलावो द्वितीये मता दोए मानक पहुंचावो तृतीये मता किश करो उपाया मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया हजूर अगे बेनती कीती गई के महाराज जे हुक्म करो ता बादशाह जहांगीर नू पत्रका लिख दईए जां दो सियाने बंदे भेज दियो कुछ उपा जरूर करो ता धन गुरु अर्जन देव पातशाह ने आख्या मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया नेत नाल जदों बड़े हंकार दे नाल सुली खां चढ़ाई करके आ रहा सी ता इस दा कोड़ा ऐसा पागल होया बलदे पठे विच जा वड़िया ते सुनी समेत स्वाह हो गया इस शुकराने वजों हजूर ने शब्द उचारण कीता सुलही ते नारायण राख सुलही का हाथ

समय दे लोकां ने तां भावें उस नूं शूद्र कहा पर उस रविदास चमार ने राम दा सिमरन करके वाहिगुरु दी भगती करके ओ पदवी पा ली गुरु पंचम पातशाह कहिंदे हन।

अंतर ज्योत राम परगासा गुरमुख बिरले जाने भगत कबीर साहब का उचारिया होया ए शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे विच दर्ज है।

कि परमेश्वर का जद मिलाप हुंदा है फिर इंसान की अवस्था की हुंदी है और परमेश्वर का मिलाप गुरु करांदा है और ये देव

तीन बंदा विच इस तरह वंडदे हन। हे भाई, जे कोई मनुख अपने आप नूं गुरु दे हवाले करदा है, ओह प्रकाश रूप परमात्मा दे मेल दी अवस्था नूं समझ लैंदा है। उस दे अंदर जोत जग पैंदी है, उस दे अंदर राम दा प्रकाश हो जांदा है। पर इस अवस्था नाल जान पछाण करन वाला हुंदा कोई विरला ही है। गुरु दे सन्मुख होए अजिहे मनुख नूं इह समझ आ जांदी है कि संसार एक रुख समान है।

संसार अमृत दी एक बगीची है जो उस पूर्ण परमात्मा ने बनाई है। जिवें एक पौरा फुल दे रस विच मस्त होके फुल दियां खिड़ियां पत्तियां विच अपने आप नूं जा बनाउंदा है, जिवें कोई पंछी अपने खंभां नाल हवा नूं उलारा दे के आकाश विच उड़दा है, तिवें ओ गुरमुख नाम रस विच मस्त होके पूर्ण खड़ाओ नूं अपने हिरदे विच टिकांदा है ते सोच मंडल विच हुलारा दे के प्रभु चरणा विच उड़ारी लांदा है। उस गुरमुख दी उस अडोल अफुर अवस्था विच उस दे अंदर कोमलता रूप मानो एक कोमल बूटा उगदा है जो उस दे शरीर दी तृष्णा नूं सुका दिंदा है। कबीर साहब कहंदे ने, मैं उस इंसान दा उस गुरमुख दा दास हां जिसने अपने अंदर उग्या होया एक कोमल बूटा देखिया। सत्संगत, ए ब्रह्म ज्ञान दी अवस्था दा शब्द है जेड़ा इस कहानी नूं जान लैंदा है कि परमेश्वर दे नाल गुरु मेल करांदा है और परमेश्वर दे नाल जद मेल हो जाए ते फिर ओ इंसान की

परमेश्वर का रूप नहीं समझता। इसे वास्ते ये लड़ाई झगड़े दंगे फसाद होंगे। इसे वास्ते इंसान इंसान के नाल नफरत करता है। कबीर साहब कह रहे हैं, अगर पूरा गुरु मिल जाए वो इन्हां गल्लां दी सोझी करांदा है कि ऐ इंसान इस संसार परमेश्वर का बनाया होया है, ओदे बनाए हो जीवां नाल प्यार कर, कोई भी बेगाना नहीं। पर इन्हां गल्लां दा उदों पता लगता है जदों अंतर जोत राम प्रगासा, जदों अंदर राम नाम दी जोत जग जाए। पर ये जोत किस विरले दे अंदर जगदी है, ते कबीर साहब ने कह दिता, जानी जानी रे राजा राम की कहानी। मैं हुण इस कहानी नू जान लिया है कि इह सारा संसार परमेश्वर दा बनाया होया है, इसे वास्ते ते मैनू कोई बेगाना नजर नहीं आंदा।

ज्ञान अंजन अंजन कहंदे ने सुरमा गुरु ने ज्ञान दा ऐसा सुरमा दिता कि मैनू इस गल दी सोझी हो गई राम नाम तो बगैर जीवन किसे

ता तृष्णा रूपी जल सुख गया, मन दी हर तृष्णा खत्म हो गई, क्योंकि नाम जिहड़ा है यह सारिया भुखां तृष्णावां खत्म कर देंदा। हर इंसान एक चीज मिले तो दूसरे की इच्छा मन विच पैदा होती है। हर इंसान भज रहा है, जिद कोल एक चीज है उसनू दूसरी चीज की लोड़ है। एक देश का जी राजा है, राजा बन के भी उन्हें तसली नहीं, कुछ होर चाहता। कोई वजीर है, वजीरी लेके भी वो रजिया नहीं, कुछ होर चाहता। हर इंसान भज रहा है, पर सतगुरु जी कह रहे हैं सुख नाही बहुते धन खाटे। सुख बहुती माया विच भी नहीं,

इतना चानना कितनी रोशनी होंदी है एक सूरज दे चढ़न ते। अगर हजार सूरज भी चढ़ पवे, सौ चंद्रमा भी रोशनी देवे, तामी मन दे विच हनेरा रहिंदा है अगर मन विच ज्ञान नहीं। कई बारी आपां देखदे हैं एयर कंडीशन

पानी टिकिया रहेगा, जे पानी नू धरती ते डोलो पानी खिलर जाएगा। इसे तरह साहब जी फरमांदे हन, कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे। जिवें पानी घड़े विच टिक जांदा है, इसे तरह मन गुरु दे ज्ञान दे नाल टिक जांदा है।

परमेश्वर दी कहानी दा पता नहीं लगदा। गुरु परमेश्वर दी कहानी दसदा है कि सारे विच परमेश्वर है, ते जिहड़े गुरु दा उपदेश सुनदे ने ओ फिर इस कहानी नूं जान लैंदे ने कि सारे विच

इस कार्य के असी बराबर हिस्सा करना है। और पैसे तो झगड़ा हो गए और झगड़ा होंदा भी अक्सर देखते हैं। देश दे वजीर या सरकारी लोग भी चौधरी और माया दे पीछे अपना जमीर देश कौम भी बेच देंदे हैं। इस वास्ते नहीं कि उन्हां नूं कोई सेवा दा चाह, बहुत घट होंदे हैं सेवा वाले, बहुते ते अपने स्वार्थ वास्ते ए नारा लगांदे ने असां सेवा करनी है। नारियां दे नाल सेवा नहीं होंदी, सेवा ते मन होंदी। हुण मन विच लालच दोनों भरा हैगे ने भगत, पर माया पिछे लड़ पे। ए लड़ाई इथों तक जा पहुंची, वड्डे भरा ने श्राप दे दिता, ब्रह्मा तू लालच कीता, अगला जन्म तेरा तंदुए दा होवेगा। पानी विच रह के, पानी दे विच रहन वाले जीवां नूं खा के अपनी लालच वाली ए बिरती पूरी करेगा। हुण ब्रह्मा ने भी तप कीता, उसनों भी गुस्सा आया, उसने भी श्राप दे दिता। कहन लगा ठीक है भरा, जे मैं मर जाना तो जिंदा तू भी नहीं रवेगी, तेरी भी मौत होवेगी, तू जंगल दा मस्त हाथी बनेगा। और जंगल विच भटकदा भटकदा एक दिन उसे जगह आवेगा जिथे मैं होवांगा। मैं पानी दे विच होवांगा, तू पानी पीण आवेगा, ते मैं फिर अपनी तारां दे नाल तेरियां लत्तां पकड़ के उथे पानी दे विच मैं तेनू गोते दे दे के मारांगा और इस गल का बदला लवांगा कि तू मैनू श्राप दिता है। ने भगत पर माया विच आ गई और माया ने दोनों नू भगती दे थां तों थले सुट दिता। समा आया, दोनों दी मौत होई, वड्डा मस्ताथी बन गया और छोटा तंदुआ बन गया। इस गल नू गुरबाणी विच भी साहिब जी बयान करदे हन। राम गुर सरन प्रभु रखवारे, ज्यों कुंचर तंदुए पकर चलायो, कर ऊपर कढ निस्तारे। गज पत पार उतारे, अनेकां शब्दां विच इस शाखी दा जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच और हिंदू पुराणा दे विच आंदा। एक भरा हाथी बनिया, एक तंदुआ बनिया, और वो समा आया होता जिहड़ा हाथी बनिया सी, बहुत सारे हाथी इहदे नाल ने। ए जंगल विच फिरदा फिरांदा गंडका नदी दे डुंघते आ पहुंचिया। गर्मी सी, नदी दे विच जद वड़िया और किनारे ते धुप करके पानी गर्म सी, ए ज्यों ज्यों अगे होया इस नूं ठंडा पानी मिले। और हौली हौली ए हाथी पानी दे विच काफी अगे तक चला गया और अगे एदा छोटा भरा तंदुए दी जून विच बैठा सी। उसने अपनी तारां दे नाल हाथी दे अगले पैर पकड़ ले और हाथी नूं अपने वल खिंचना शुरू कीता। पहला ते हाथी ने परवाह ना कीती, पानी पी के वापस मुड़न लगा। पिछे नहीं मुड़िया जांदा ते हाथी समझ गया मैनू कोई पकड़न वाला तगड़ा जीव है, इसने जोर लाया। कुछ पिछा आया पर फिर तंदुए दा जोर चलिया ते हाथी नूं खिंच के ओ पानी दे

ਹੋਰ ਬੜੇ ਉੱਦਮ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਮੈਂ ਬੜੇ ਉੱਦਮ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕੋ ਊਟ ਖਲੋਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਰਹਿਤਾਂ ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਆਲਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਥੋਂ ਉੱਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੰਮ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੌਖੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਔਖੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਰਾ ਹੱਥ ਵਟਾਈ ਮੇਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰੀਏ? ਜਿਸ ਮਾਨੁੱਖ ਪੈ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸੋ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਹੈਣ ਵਿਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਚ ਰਤੇ, ਆਪ ਵੀ ਤਰਨ ਜੋਗੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਤਾਰਨ ਜੋਗੇ ਹੈ, ਆਪ ਤੁਰਨ ਜੋਗੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰਨ ਜੋਗੇ ਹੈ। ਪਰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਸਰਾ ਬਣ ਸਕੇ ਕਿ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੱਚਾ ਤਾਰੂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਕੱਚੇ ਤਾਰੂ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡੁੱਬ ਲੈਂਦਾ ਨਾਲ, ਪੱਕਾ ਤਾਰੂ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜੱਫੇ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੱਫੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਆਵੇਗਾ। ਕੱਚਾ ਤਾਰੂ, ਅਣਤਾਰੂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਆਪ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਬੌੜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਅਣਤਾਰੂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਤੁਰਾਂ, ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਲੜ ਫੜਾਂ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨੋ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ ਤੂੰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੰਝ ਨਿਮਾਣੀ ਥਾਂ ਮੈਂ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ। ਹਰ ਓਟ ਕਹੀ ਮਨ ਅੰਤਰੇ, ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਮ ਜਪਨ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਪ ਜਪ ਜੀਵਾਂ ਨਾਉ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਤੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਜਨ ਧੂਰੀ ਸੰਗ ਸਮਾਉ ਤੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਰਾਖੇ ਤਿਉਂ ਰਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਾ ਖਾਉ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰੱਖੇ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧੂ ਕੇ ਲਾ ਲੈ। ਉੱਦਮ ਸੋਈ ਕਰਾਏ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਗਾਉ, ਬਹੁਤ ਉੱਦਮ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਕਈ ਗਲਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਕਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉੱਦਮ ਮੈਂ ਬਥੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਰੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਕੱਚੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਉੱਦਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗਤ ਦਾ, ਭਗਤੀ ਦਾ, ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਲਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਉੱਦਮ ਕਰਾ, ਉੱਦਮ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਉੱਦਮ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਦਮ ਕਰੋ ਕਰਾਵੋ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਕਰਾ, ਇਹ ਉੱਦਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਕਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਤੁਰੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਦਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਹ ਚੱਲ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤਾਂ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਯੋਗ ਮੰਗ ਹੈ। ਨੀਅਤ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈ ਤੂੰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਤਾਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਬੀਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪੇ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਤੂੰ ਨੀਅਤ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਮਨ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨਾ।
एक कदम तो चुकना, जे तू एक कदम भी नहीं चुकेगा तू ओदे कोलों की आस करना कि करोड़ा कदम अगे होके तेनू लै तुरे। एक कदम तू चुक, एक बार सतगुर मंत्र सिमरन मात्र, तू अपने सतगुरु नू एक बारी चेते करन मात्र जबान ते तलिया, तू एक बारी प्यार नाल धन गुरु नानक तक हो, एक बारी तू प्यार च भिज के वाहिगुरु कह के ता वेख, सिमरन ता है बारंबार गुर हेत है, वो तेनू लखा वार याद करेगा। एक गल प्रसिद्ध है इस्लाम विच, कहिंदे ने कि बंदा एक बारी हाथ उठा के कह देवे ना या खुदा बंदा, ते खुदावंद सत वारी कहिंदा है या बंदा या बंदा या बंदा या बंदा या बंदा, सत वारी कहिंदे। लेकिन भाई साहब कहिंदे ने नहीं, बहुत थोड़ी गिनती है, तू एक बारी खुदावंद कवे वो सत वारी कवे तो बड़ी छोटी भाजी, तू एक बारी याद कर वो तेनू लखा वार याद करन नू बैठे। एक बार सतगुर मंत्र सिमरन मात्र, सिमरन ताहे बारंबार गुर हेत है, प्यार नाल याद कर। पावनी भगत पाए कौडी अग्र भाग राख है, अग्र भाग भाव चरणा विच सामने लिया के हाजिर कर दे। एक कौडी भी प्यार नाल अचला के मारन वाली गल ना होवे, माफ करना, या दानी बन के ना मैं गुरुद्वारे दिते ने ना, इथे ता अर्पण करना, तेरा किया तुझे क्या अर्प, मैं दे की सकना तेरी दात विचों, आ तेरे ही अगे निगुणा जिया प्यार भेटा करन वास्ते एक जतन है, दे की सकना मैं, मंगता दे की सकना, दाते दे अगे दे की सकना मैं। पावनी भगत पाए प्यार नाल भगती ते प्रेम नाल भिजिया होया, कौटी अग्र भाग राखे ताहे गुर सर्व निधान दान देत है, उस सतगुरु दे पासो ए मंग मंगनी के पातशाह कृपा करो, तुसी उद्दम कर करदे नू करा लो, मैं उद्दम करदा तुसी करा लो, इनू सिरे चाढ़न दी समर्था तुसी बख्शो, उद्दम करो कराव हो ठाकुर पेखत साधु संग, सतसंगत दे दर्शन करन वास्ते मैं एक कदम चुकना, बाकी तुसी मेरी बाह फड़िया जी जरा। हर हर नाम चढ़ावो रंगन, मैनू नाम दा रंग चढ़ा दियो, पर वेखियो आपे ही तुहानू चढ़ाउणा पैणा, मैथों नहीं पिया चढ़दा, आपे ही प्रभ रंग मन मैं राम नामा जाप, कर कृपा वसो मेरे हिरदे, तुसी रहमत करो मैं ता तुहाडे चरणां च वसण तों असमर्थ हो गया, तुसी मेरे हिरदे च वस जाओ आके, मैं ता तुहाडी हजूरी च नित रह सकण तों असमर्थ हां, तुसी कृपा करके मेरे हिरदे च टिक जाओ, कर कृपा वसो मेरे हिरदे, होए सहाई आप, इहदे च तुसी सहायता करो मेरी, मेरे कोलों इह जतन सिरे नहीं पिया लगदा, मैं हिरदे च तुहाडी मूरत तुहाडा ध्यान वसा लैणा चाहुणा, मैथों वसदा नहीं पिया, मन हुजता करदा है, मन दे फुरने रुकावट बनी चले जांदे ने, संसार दे झंझट मैनू तुहाडा ध्यान हिरदे च वसाउण नहीं पै दिंदे, कृपा करो, कर कृपा वसो मेरे हिरदे, होए सहाई आप, मन तन तेरा तन भी तेरा, तन दा तन मन तेरा, तू प्रभ मेरा, हमरे वस किछ नाए, ज्यों तू राखे ज्यों ज्यों राखे त्यों त्यों रहना, तेरा दिता खाहे तेरा दिया खाहे, उथे भी कहिंदे कर कृपा प्रभ अपनी, जन धूरी संग समाओ, ज्यों तू राखे त्यों रहा, तेरा दिता पहना खाओ, उद्दम करा जिथे बाकी सारा कोई तेरिया रहमतां नू मानन दा मैं उद्दम कर रहा, उथे तेरी भगती विच खुब जान दा भी मेरा जतन सफला हो जा। और वैसे भी साध संगत, जिस मनुख दे जीवन च उद्दम नहीं ना, ओ बंदा जंग नाल मारिया जांदा, किसे वेले भी ओ रस्त नाल मारिया जाएगा, जंगाल मार जाएगा उहदे जीवन नू। मन नू भी उद्दम दी लोड़ है, तन नू भी उद्दम दी लोड़ है, जिस बंदे दे शरीर च उद्दम नहीं उहदे मन दा उद्दम भी सिरे नहीं लगदा, ते जिहदा मन भगती वाले पासे पुरजोर यतन नहीं करदा उहदे शरीर दा यतन उद्दम भी बेकार चला जांदा, दोवां पक्खां तों उद्दम करन दी लोड़ है। साहिब कलगीधर पातशाह दे पावन दरबार च इक प्रेमी लाल चंद हलवाई नाम दा आया सी, सतसंगत चा के चौंकड़ा मार के बैठिया करे, माला भी हथ च रखिया करे, कई चिर हो गया, सिखा ने आके किया पातशाह लाल चंद कुछ नहीं करदा, जिदण दा आया है कई महीने हो गया कुछ भी नहीं करदा, वेखो ना किवें ढिड कटिया किवें फैलिया होया कुछ भी तो नहीं करदा। साहिबा ने बुला लिया, लाल चंद भी तेरी शिकायत तू कुछ नहीं करता, कि महाराज एवें कहिंदे ने, मैं अमृत वेले जागदा भी हाँ, संगत चाह के बैठदा, माला भी फेरदा, मैं बाणी भी पढ़दा,
कि महाराज सेवा लंगर च नहीं सेवा करना होता कदे कदे इन्हें सफाई की सेवा नहीं की कदे कोई संगत की सेवा च हाथ नहीं वटाया क्यों भाई लाल चंद कि महाराज जो जो भगती जो मैं कर लेना मैं बाणी जो पढ़ लेना साहब कह लगे अधूरा काम कर रहे हैं लाल चंद इस तरह नहीं सरना कुछ हाथ पैर भी सफले करने पैणगे जे शरीर नू आलस मार गया तेरे मन का उद्यम की करेगा तेरी भगती की बाणी पढ़ी जब शरीर बेकार हुंदा चला गया ध्यान देना शरीर नाल कुछ ना किया शरीर बेकार हो जाएगा मन नाल कुछ ना किया मन बेकार हो जाएगा साहब कह लगे शरीर का भी कुछ कर शरीर नू भी आरे ला शरीर नू भी उद्यम विच रख इहनू भी थोड़ा जिहा चुस्त रखण वास्ते सतर्क रखण वास्ते कुछ जतन कर कुछ भज नाथ सेवा विच करिया कर लंगर दी सेवा विच संगत दी सेवा विच बहुत कम ऐसे ने जेड़े और ये गुरु घर की बड़ी प्यारी व्यौत है आ जिहड़ा गुर संगत विच चल के आउणा ना कई लोग समझदे ने घर च महाराज दा प्रकाश कर लिया साडा सर गया कर ध्यान देना गुरु ग्रंथ साहब घर विच होण धन भाग गुरबाणी दी स्टडी हर सिख दा काम है और घर घर अंदर धर्मसाल होवे इह तां भाई साहब भाई गुरदास जी गुरु नानक दी रीझ दसदे ने लेकिन खिमा करना सत संगत विच उठ के आ जाना इहदे किन्ने फल होणगे एक तां तुसीं सिख भाईचारे नाल जुड़ जांदे गुरु पुत्रां नाल जुड़ जांदे हो भरावां नाल जुड़ जांदे ते दूजी गल इह उठ के आउण विच तुरन फिरन दा उद्यम भी हो जाएगा आन जान की खेचल जी शरीर में होगी वह जी मॉर्निंग वाक लोग कहें अमृत वेले की सैर यह सुते सिद्ध हो जाएगी जिन्हें बड़े ही गुण ने बड़े ही फायदे ने बड़े लाभ ने इतने आके कोई बंदा जोड़िया च खलो जाता है कोई लंगर वाले पासे लग जाता है कोई होर किसी उद्यम कितने लाभ हो जाएंगे कितना शरीर को फायदा हो जाएगा ते बाकी सत्संगत दे आसरे गुरु चरणां च ध्यान जोड़ के जिसले बाणी नाल अपना मन जोड़ांगे उस वेले मन भी उद्यम आ जाएगा मन भी सतर्कता आ जाएगा साहब चाहते ने मनुख दोवें तरह उद्यम आवे शरीर करके भी मन करके भी एक पक्ष भी यदा कमजोर रह गया तो किवें चलेगा आखिर मन ने शरीर च ठहरना है जे मन बेकार हुंदा चला गया जंग आलूद हुंदा चला गया यह मन कित्थे टिकेगा शरीर दियां लंबियां उमरां होण यह चुस्त होवे कम आउण जोगा होवे परउपकारी होवे इस करके इस शरीर नूं सतसंगत दा आहार बख्शिश कीता है सेवा दा आहार बख्शिश कीता है ते मन नूं भगती ते सिमरन दा आहार बख्शिश कीता है जे नहीं हुंदा आपां एक कदम चुकीए ते बाकी दुहाई महाराज दी पाईए साहिब कृपा करो आ थोड़ा जिहा उद्यम मैं करना बाकी तुसीं करा लो उद्यम सोई कराए प्रभ मिल साधु गुण गाओ ते पातशाह होर कोई आसरा नहीं जिहड़ा मैनूं इस पासे तोर सके दूजी जाए ना सुझई किथे कूकण जाओ अज्ञान बिनाशन तेरी संगत ते तेरा नाम अज्ञान नूं दूर करन वाला तम हरण जीवन विचों तमो गुण नूं तमा आदिक नूं कढ़न दा कारण बनदा उचे अगम अमाओ मेरे वाहिगुरु मन विछड़िया हर मेली है तेरे नाल टुटा होया मन किसे तरीके नाल मेल लै अपने नाल जोड़ दै मन विछड़िया हर मेली है नानक एह सुआओ मेरा तां इह मकसद है जीवन दा सर्व कल्याणा तित दिन हर परसी गुर कै पाओ उस दिन सारे सुख हो जाएंगे सारे कल्याण जीवन विच वरत जाएंगे जिस दिन तेरे चरणां नाल

के नजदीक चला गया। जिवें दो मित्र एक दूजे नाल गल्लां करते कि दुश्मन नूं भी ना हरखी जाए। मालिक कोल बैठ के कह रहा, रब तू भी किठा सी और बड़ा खतरनाक ठग, शायद दुनियावी ठगां दी जाल विचों कोई निकल जाए, पर तेरा ऐसा जाल है कोई नहीं निकल सकता। वेख न, एक तरफ बाप है एक तरफ पुत्र है, पुत्र जवान होंदे दोआं विच तेरी जोत है, वेखदिया पुत्र तुर जांदा है ते बाप ताई मार के रो पै कहिंदा मेरे जीवन दा की फर्क। ओ रो रहे ते तू तमाशा वेख, कैसी तेरी ठगी है, स्त्री नू पति लई पति नू स्त्री लई शिकवे हन। कबीर जी कहते हैं

सिक्का जद हर दो आलम तेगे नानक साहिब अस्त फतेह गोविंद सिंह शाहे शाहान फजले सच्चा साहिब अस्त। ए लफज जेड़े लफज आप जी सरवण कर रहे हो ए लफज जेड़े सन

बाबा बंदा सिंह बहादुर ने ये लफज लिखाए जेड़े के इतिहासिक लफज हैं। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपने नाम ते सिक्का नहीं चलाया बल्कि धन गुरु नानक साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के नाम ते यह सिक्का चलाया। सिख राज दा पहला सिक्का जिदे बोलां दा यह मतलब है सिक्का जद हर दो आलम कहंदे ने दो जहान तेगे क्या है तलवार नू किरपान नू नानक साहिब अस्त फतेह गोबिंद सिंह शाहे शाहान फजले सच्चा साहिब अस्त फजले कहंदे ने मेहर किरपा। इना दोनों लाइना दा अर्थ ए सिक्का दोहां जहाना वास्ते है। गुरु नानक देव जी दी तलवार नाल अति शहनशाह दे शहनशाह सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी दी कृपा द्वारा यह सिक्का चालू होया। सिक्के दे दूजे पासे बाबा बंदा सिंह बहादुर ने यह लिखवाया जरब बा ईमान उल दहर मुसवरात शहर जीनत उल तख्त मुबारक बख्त। फारसी दे लफज जिसका मतलब जिस थान ते हर आदमी नु शरण मिलती है जिथे एक सुंदर नगर वसदा है अते जिसका शिंगार ए भागा वाला तख्त है उस थान ते ए सिक्का बनाया गया। भाव कि ए जड़ा सिख राज दा सिक्का गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह दी कृपा द्वारा मैं चालू कर रहा इस राज विच सब बराबर ने इत्थे सारिया नू सत्कार मान इज्जत मिलदी है और ए सिक्का गुरु की कृपा द्वारा सिख राज का पहला सिक्का

गोदावरी दे कंडे आश्रम बना के रहने वाले जिदे आश्रम वाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जा रहे ने, इस बारे थोड़ा जहा ज्ञान जरूरी है। लिखे है लक्ष्मण देव का जन्म जम्मू अते कश्मीर की एक रियासत राजौरी विखे होया। जम्मू कश्मीर की एक प्रसिद्ध रियासत जिदा प्रसिद्ध नगर राजौरी जिथे लक्ष्मण देव का जन्म होया। इन्हां दे पिता एक मामूली जहे जागीरदार सन और एक दिन शिकार खेडदिया लक्ष्मण देव ने एक तीर दे नाल एक हिरनी नू मार सुटिया, पर ओ हिरनी गर्भवती सी। जदों हिरनी नू तीर मारिया हिरनी जड़ी सी मरी, उदे पेट विच दो बच्चे सन जेड़े के तड़फ तड़फ के वो भी मर गए। इन्हां छोटे छोटे बच्चियां दी मौत हिरनी दे नाल लक्ष्मण देव ने देखी, उदे मन

आश्रम बना के रहन लग पे अते अपना समा योग साधना विच बतान लग पे। इस गोदावरी दे किनारे बहुत समा योग साधना करदया बीत गया। इत्थे ओ सारी दुनिया तो दूर सारी दुनिया नाल रुस के घोर तपस्या विच जुट गया। इसे जगह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आज अपने सिखां दे नाल घोड़ियां ते सवार होके पधारे हन। जिस वक्त माधो दास दे आश्रम पहुंचे ते माधो दास उस वेले अपने डेरे विच नहीं सी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज माधो दास दे डेरे पहुंचे अते जाके माधो दास दे पलंग ते विराजमान हो गए। माधो दास दे चेलिया ने कहा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नू कि ए साडे स्वामी दा पलंग है, आप जी इत्थे ना बैठो। पर गुरु साहिबा ने कहा असा जिथे बहना सी बह गए हां क्योंकि गुरु दे कौतक गुरु जानदे। उधर चेले जंगल विच भजे गए। माधो दास बैरागी नू जाके कहन लगे तुहाडे पलंग ते एक बड़ा तेजवान पुरश आके बैठ गया, लाओ लश्कर भी नाल है। ओदे चेहरे अगे किसे दियां अखां नहीं हुंदियां। तां माधो दास गुस्से विच आ गया, कहन लगा दिखावे पलंग पर बैठने का स्वाद कि जेड़ा मेरे पलंग ते बैठा है मैं उन्नू पलंग तो थले डेग दियांगा और अपनी योग शक्ति दे नाल जंगल विच बैठे हैं पलंग नू उल्टान दी कोशिश की थी। पर माधो दास बैरागी पलंग नू उल्टा ना सके। जद माधो दास बैरागी ने पूरा जोर लाया पलंग उल्टान वास्ते, पलंग ना उल्टा सकया ता समझ गया कि मेरे पलंग ते जेड़ा बैठा है वो कोई मामूली इंसान नहीं। ते माधो दास बैरागी अपने आसन तो उठया और ए देखण वास्ते आश्रम वाल तुर पिया।

जी महाराज के दर्शन किए, ये हाथ अपने आप जुड़ गए। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने माधोदास नु देखिया उस

जोरावर सिंह फतेह सिंह जिन्हां दी उम्र 6 साल 7 साल दे लगभग उन्हां नूं जिउंदिआं नूं नीहां विच चिण दिता गया। ये सारियां गल्लां माधोदास ने सुनिया, ओदियां अखां विचों अथरू वह तुरे, पर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बिल्कुल शांत बैठे ने। इतिहास दसदा है कि माधोदास ने बैराग अते जंगल नूं हुण छड्ड देण दा फैसला कीता अते प्रार्थना कीती

महाराज ने माधोदास बैरागी नू अमृत छकाया ते नाम बंदा सिंह बहादुर रखिया अते नाल इन्हां नू गुरबख्श सिंह भी किया जांदा है। गुरु साहब ने अपने पांच तीर दिते जिन्हां दे नाल सोने लगे हुए सन। पांच सिंह अनेकां वस्तुआं दे के बाबा बंदा सिंह बहादुर नू जालमा दा नाश करन वास्ते नादेड़ तो गोदावरी दे कंडे तो पंजाब वल तोर दिते।

दशक प्रजापति ने यज्ञ किया, सारे देवत्या नु बुलाया, पर भगवान शंकर नु नहीं बुलाया। शिवजी भगवान कैलाश पर्वत ते सन, वो सारा तमाशा देख रहे सन, पर शंकर भगवान दे धर्म सपत्नी माता सती ने उन्हां नू कहा, शंकर भगवान नू, भगवान मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, उन्हां सारिया नू बुलाया है, पर ना मैनू बुलाया ना तुहानू बुलाया, परंतु वो मेरे पिता दा घर है, इसलिए मैं जाना चाहनी। शिवजी भगवान ने कहा, बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए, पर सती जी ना मने ता भगवान ने जान दी इजाजत दित्ती। सती जिस वक्त अपने पिता दशक प्रजापति दे महलां विच पहुंचे जिथे यज्ञ हो रहा सी, ता दशक प्रजापति ने सती नू कोई आदर ना दिता, सगा शंकर भगवान का भी अपमान किया। जदों इस गल का सती ने बुरा मनाया, ता दशक ने अगू सगा होर किया, ओ नंग तड़ंग शिवजी भगवान, मैं ते कदी भी राजी नहीं सा उसनू अपना जवाई बना के। सती ए बर्दाश्त ना कर सके, उन्हां योग साधना दे नाल अपने शरीर विचों अग पैदा कीती, सड़ के भस्म हो गए। शिवजी भगवान नू पता लगा तां उन्हां ने उसे वक्त अपनी एक लिट पुट के सुटी, जिदे विचों भयंकर आवाज करदिया होया महाभैरो वीरभद्र वगैरह पैदा होए, ते जिन्हां ने आग्या मंगी ता भगवान ने कहा, जाओ उन्हां दुष्टां दा नाश करो जिन्हां ने सती दा अनादर किया। ता उसे वक्त उन्हां ने दशक प्रजापति दा सिर वढ़ के यज्ञ दी अग्नि विच सुट दिता, हर पासे खून दे फुहारे छुट पए, सारे लोग यूं नसन लग पए जिउ प्रचंड महातांडव नचदी होई परलो आ गई होवे। इसे तरह यह कथा शिव पुराण दी, शिवजी भगवान ने महाभैरो नू अपने तेज विचों जिवें पैदा किया, अपने अलेटा विचों

बंदा सिंह बहादुर, जगह जगह जालमां नूं सजा दिंदा होया सरहंद दे लागे जा पहुंचिया। सरहंद जेड़ा कि पंजाब विच एक ऐसा शहर सी जिहदी तुलना किसे समय आगरे दे नाल लोक करया करदे सन। आगरे शहर तो भी वधिया जे कोई शहर है ता सरहंद है। जिस वक्त बाबा बंदा सिंह बहादुर सरहंद दे कोल पहुंचिया अपनियां फौजां दे नाल और इसे सरहंद वल बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कहर दिया निगाह नाल देखिया, वो नजारा उन्हां दी अखां दे सामने आ गया। इसे सरहंद विच वजीर खान ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के छोटे साहबजादे जिन्हां दी उम्र 8 साल तो भी थले, उन्हां जिउंदियां नूं इत्थे नीहां विच चिण के शहीद कर दिता गया। वो नजारा अखां सामने आया, अखां गुस्से नाल लाल हो गईयां। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपने फौजियां नूं वंगारदिया होया आखिया, एहो ही वो सरहंद है जिस जगह मेरे गुरु दे नन्ने नन्ने मासूम बच्चियां नूं द्वार विच चुणिया गया। बचाना इस शहर का नाम निशान मिटा दे। वजीर खान ओदे अहलकार सब खत्म कर दियो, नीहां विच साहबजादे चिणे गए। देखो कोई दीवार ना रहे, कोई मकान ना रहे, कोई किला ना रहे, कोई छत ना रहे, हाल चला दियो, इस शहर नूं मिट्टी च मिला दियो। देखदिया देखदिया बाबा बंदा सिंह बहादुर दी फौज ने सरहंद ते हमला कर दिता। वजीर खान अपने वजीरां नाल अहलकारां नाल जरनैलां दे नाल लड़न वास्ते आया, पर बाबा बंदा सिंह बहादुर अगे कोई टिक ना सकिया। देखदिया देखदिया शहर साड़ के सुआह कर दिता, किले ढा दिते, मकान ढा दिते, शहर नूं ढा ढेरी कर दिता। वजीर खान वो भी मारिया गया, उहदे वजीर अहलकार जरनैल सिपाही सब मारे गए। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद ते फतेह कीती। जिस वक्त सरहंद नूं फतेह कीता उहदी इट नाल इट वजा दिती और फिर फतेह दा डंका वजा के ए नहीं कहा कि मैं जितया, हाथ जोड़े ते कहन लगे, धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह आप दी कृपा द्वारा साहबजादे दी शहीदी दा अज मैं बदला ले ले। और 7 साल जुलम दे खिलाफ तबाही अते बर्बादी दा ए तूफान बाबा बंदा सिंह बहादुर ने उठाई रखिया। बाबा बंदा सिंह बहादुर बेशक आप ना रहा, पर तुरकां दी हकूमत नूं उसने मिट्टी विच मिला के रख दिता। अते जदों फतेह कीती, तुरकां दी हकूमत खत्म कीती, तां उस वक्त बाबा बंदा सिंह बहादुर ने फिर सिख राज दा पहला सिक्का चलाया और उसते अपना नाम नहीं गुरु दा नाम लिखाया। सिक्का जद हर दो आलम तेगे नानक साहिब अस्त, के ए सिक्का दो जहाना वास्ते है। गुरु नानक दी तलवार अते गुरु गोबिंद सिंह जी दी कृपा द्वारा

समझदार सोजी वाले आ, एक होर रस भी है जिनू नाम दा रस कहिंदे, हरी दा रस कहिंदे, होर बड़े स्वाद तू वेखे होंगे। मालक ने बड़ी प्यारी रचना बनाई, साढ़े जेड़े ज्ञान इंद्रे ने ना, पांच ज्ञान इंद्रे, फाइव सेंसेस, अखा वेख दिया, जीव चख दी, कान सुनदे ने, नक सुंघदा है, शरीर दी त्वचा, शरीर दी स्किन जो है छो के पता लाउंदी आला दुआला की है। लेकिन ये एक होर भी गल है, इन्हां पंजां ही ज्ञान इंद्रियां च मालक ने रस भी पा छड़े, स्वाद भर छड़े, अखां वेखदियां भी ने, वेखण दा रस भी लैंदियां, जे तां नजारा वधिया है ते अखां रस लैंदियां, ते जे नहीं तां फिर मूंह दूजे पासे भी हो जांदा। जे सुनी जाण वाली आवाज सुरीली है, रस विच है, सुर विच है, ते बंदा ध्यान नाल सुणदा है, बल्कि हमातन गोश सारा शरीर कानी बन जाता है, पूरा ध्यान। पर जे वो आवाज बेसुरी हो ते कन्ना चुंगला भी दे लेता है, अणपौंदा शोर हो ते नहीं भी बर्दाश्त होता। इसे तरह सुंघण की शक्ति कदे बदबो भी लैंदी है ते दुखी भी होंदी है, खुशबू नाले सुखी भी होंदी, जीव ते कुछ कौड़ा आ जावे ते थू थू भी बंदा करदा है, कुछ स्वादला आ जावे ते अखां भी बोलदियां ने रस आया। इन्हां पंजां ज्ञान इंद्रियां विच ही रस मालक ने भरे, ये नखेड़ लैंदे ने रस देने वाली केड़ी केड़ी वस्तु, ते फिर उस रस पिछे, स्वाद देन वाली शय पिछे कई बार बंदा कमला भी हो जाता। इथों तक कमला होया बंदा कई बार इन्हां रसा पिछे, सुन दे रस पिछे, सुंघण दे रस पिछे, वेखण दे रस पिछे, छोण दे रस पिछे, चखण दे रस पिछे, इन्हां स्वादां च कई बार बंदा इन्ना कमला हो गया जानवरां तों वी थले जा गए। पावन बाणी च बचना है, मृग मीन भृंग पतंग कुंचर, मृग नूं हिरण नूं कन्ना दा रस है, मच्छी नूं जीभा दा रस है, पवरे नूं सुंघण दा रस पिया है, फुल दे विच बैठा बैठा विच ही शहीद हो जांदा, फुल मिटिया जांदा विच खत्म हो जांदा, पतंगा अखां दे रोग दा मारिया, इहनूं वेखण दा रस है, ज्योति उत्ते सड़ मरदा है। पर महाराज कहिंदे ने देखो कैसी गल है, मिर्ग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश, इन्हां नूं एक एक स्वाद पिया है, ते पंच दोख असाध जामे, बंदे नूं तां पंजे पंजे कट्ठे भी लगे होए, तां वी तां की केतक आस, इहदा किवें बचा होए। असल गल इह है कि बंदे नूं अंदरला रस नहीं आया, एक आत्म रस भी है। साहब कलगीधर पातशाह ने वचन किया, साहब कहिंदे ने

जमरौत दी जंग विच सिखां ने पठाणा नूं ऐसी मार मारी कि पठान कन्ना नूं हथ ला तौबा तौबा कर उठे। काबल दियां गलियां बाजारां विच नलुए दियां गल्लां होण लगियां। नलुए तो डरदे पठान सूरज डुबदे सार घरां नूं जंदरे ला अंदरी लुक जांदे। चार चुफेरे मरियां वर्गी चुप छा जांदी। अपने रोंदे न्यारियां नूं चुप कराउण लई पठानियां इउं डराउंदियां।

0: सिख राज दिया हद्दा, दिनों दिन काबल वालू वद्दिया देख, पठार सोची डूब गए।
1: अमीर काबल दोस्त मोहम्मद खां घबरा गया।
0: सरदार हरी सिंह नलुए दी चढ़त, पठाना नू अपनी मौत दिसन लगी।
1: कई हजार मुल्किया कट्ठा कर शमी खान ने अपने दादे परदादे दी बहादरी दे वास्ते पौंदिया इंज आखिया।

0: 28 अप्रैल 1837 दा सूरज चढ़दिया ही 1000 सिंघा ने पठाणा नू जा ललकारिया। सत श्री अकाल दे जयकारिया नाल आसमान गूंज उठिया। तलवारा पिड़िया
1: धरती लहू लुहान हो गई,
0: लोथा ते लोथा चढ़ गईया। गुरु दे सिंघा ने ऐसे हद दिखाए कि गाजिया दे दंद जुड़ गए। दूजे दिन तोपां दे गोले दागे। रात पैंदिया ही जमरौद किले दी सज्जी कंध विच पाड़ पै गया।
1: हुण महासिंह अग्गे तीन काम सन, किले दी राखी करना, कंध दा पाड़ पूरना ते पिशोर बीमार पए सरदार हरी सिंह नलुए नू सुनेहा पहुंचाना।
0: सिंघा दे रोक दिया बीबी हरशरण कौर जत्थेदार तो चिट्ठी लै पेश बदल, किले विचो निकल तुरी। रातो रात पेंडा मुका, पिशौर च सरदार हरी सिंह नलुए नू जा चिट्ठी पुचाई। पढ़ के सरदार दिया अखा विच खून उतर आया। डौले फरके तलवार दे मुठे ते हथ गया। ऐ सोच के कि मेरी जिंदगी ही सिख राज दी जिंदगी है, ओ उठ बैठा। खालसे दी तलवार आज हिंदुस्तान दा इतिहास बदल सकती है। मैं जान नालों सिखी शान नू प्यारी समझदा हां। ऐ सोच दिया ही चट सिंघा नू इकट्ठे कर सरदार हरी सिंह नलुए ने इंज ललकारिया।

नगाड़े ते चोट लगी, खंडे तलवारा ते बर्छे लिशके, केसरी निशान चूले, कोड़िया दे पौड़ा नाल, पहाड़ियां गूंज उठिया। 10,000 सिंघा ने जमरौद वालू कूच कर दिता। सरदार हरी सिंह नलुए ने इंज ललकारिया।

0: अप्रैल 1837 का सूरज चढ़दिया ही सरदार हरी सिंह नलुए ने सिख फौजा समेत बोले सो निहाल दा जयकारा गजा शम्मी खां दी फौज दा जा टाकरा कीता। तलवारा बरछिया विच्चों मौत दे चंग्यारे निकले, लोथा नू लिताड़ दे सिंगा दे कोले अगे वदन लगे, मनुखी सिर मतीरिया वांग पैरा विच रुलन लगे।
1: धरती लाल सूही हो गई, सरदार हरी सिंह नलुआ ते शम्मी खान मैदाने जंग विच एक दूजे नू एओ टकरे।

0: सरदार हरि सिंह ने फट नू कुट के बन लिया। कोड़े नू जमरौद किले वालू मोड़ दिता। किले विच पहुंचदिया ही जत्थेदार महा सिंह ने नलुए सरदार नू कोड़े तो ला पलंग उत्ते लिटा दिता। तकलीफ वद्दी गई।
1: अद्धी रातों शरीर निढाल हो गया, जान साथ छड़न लगी, पर सरदार दे मुख ते लाली उसे तरह डलक रही सी। अजे भी सज्जा हाथ तलवार दी मुठ उते ही सी।
0: मैदानों परत के आए सिंगा तो लड़ाई दा हाल पुछया। जित दी खबर सुन गज के जयकारा बुलाया।
1: ते फेर सारे सिंगा वाल तक सरदार हरि सिंह नलुए ने हौसला दिंदे आख्या,
2: खालसा जी, मैनू अकाल पुरख दा सद्दा आ गया है। मैं पंथ वास्ते जमया सी, ते पंथ वास्ते शहीद हो रिया। मेरे पिछों घबराउणा नहीं, तुसी खालसा राज दे राखे हो। खालसा जी जित्ता जारी रखनिया, पठान मुड़ के हिंदुस्तान वल मुंह ना कर सकन।
1: एह कहंदिया ही सरदार हरि सिंह नलुए ने अंतम सुनेहा इंज दित्ता।

ये जो शब्द आप सर्वन कर रहे हो गुरु अर्जन देव पातशाह जी दा शुकराने दा शब्द है सुलही ते नारायण राख समें दा बादशाह जहांगीर जिसनू ए गल चंगी नहीं सी लगदी के गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जावे गुरु नानक दे दर ते जिथे गुरु के सिख आके जुड़दे सन हिंदू भी और मुसलमान भी रूहानियत प्राप्त करन लई हजूर दे चरणा विच आ जुड़दे सन इस दे मन विच बड़ा दुख सी के गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जा रही है अपने सीपा सलार नू हुकम दिता भाई तू कश्मीर नू जा रहे हैं जंग करन लई ते रस्ते विच गोंदवाल नाम करके पिंड है जिथे गुरु अर्जन देव रहिंदा है उसनू भी शोध दा जाई उचारण करो श्री वाहिगुरु ते जदों ए पता गुरु अर्जन देव पातशाह जी नू लग्या ता सिखा ने बेनती कीती जो इस शब्द विच अंकत है प्रथमे मता जे पत्री चलावो द्वितीये मता दोए मानक पहुंचावो तृतीये मता किश करो उपाया मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया हजूर अगे बेनती कीती गई के महाराज जे हुक्म करो ता बादशाह जहांगीर नू पत्रका लिख दईए जां दो सियाने बंदे भेज दियो कुछ उपा जरूर करो ता धन गुरु अर्जन देव पातशाह ने आख्या मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया नेत नाल जदों बड़े हंकार दे नाल सुली खां चढ़ाई करके आ रहा सी ता इस दा कोड़ा ऐसा पागल होया बलदे पठे विच जा वड़िया ते सुनी समेत स्वाह हो गया इस शुकराने वजों हजूर ने शब्द उचारण कीता सुलही ते नारायण राख सुलही का हाथ